0: हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट ते थोड़ा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना दे शहर टोरंटो। जी दोस्तों, हाँ, तुसी सुन रहे हो www.parvazradio.com खेड़ा लाइव शो, जानकारियां भरपूर। दोस्तों, अज असी गुरु रविदास जी दे बारे दे विच थोड़े नाल कुछ जानकारियां दी सांझ पावांगे जी। ते उना दे शब्दां नूं आवाज देणगे दिल्ली तों आराधना सिंह जी, जो के बहुत ऐसे कट सिंगर हन, गायक हन, जो के गुरु रविदास जी दे 41 दे 41 शब्दां नूं गाउण दे विच महारत हासिल करदे हन जी। आराधना सिंह जी जो दिल्ली विच रहिंदे हन, उना दे विचों एक है जी। ते अज असी उना दे मुखार बिंद तों श्री गुरु रविदास जी दे कुछ शब्दां दी सांझ तुहाडे नाल पावांगे जी। साडे नाल जुड़ चुके हन जी आराधना जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम प्रवाज रेडियो दे प्लेटफॉर्म दे उत्ते जी।
1: सच्ची गल सर, आप जी दा भी वेलकम भारत दी राजधानी दिल्ली च, और जितने साडे सुनन वाले ने श्रोता, आप सब नु बड़े अदब
0: सी गुरु रविदास जी दे बारे दे विच तुहाडे नाल कुछ जानकारियां दी सांझ पावांगे जी। ते उना दे शब्दां नूं आवाज देणगे दिल्ली तों आराधना सिंह जी, जो के बहुत ऐसे कट सिंगर हन, गायक हन, जो के गुरु रविदास जी दे 41 दे 41 शब्दां नूं गाउण दे विच महारत हासिल करदे हन जी। आराधना सिंह जी जो दिल्ली विच रहिंदे हन, उना दे विचों एक है जी। ते अज असी उना ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰਵਾਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ।
1: ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਚ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰੋਤਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ, ਬੜੀ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ।

जी दोस्तो, गुरु रविदास जी की बाणी वक वक रागां विच दर्ज है। जिवें कि सिरी राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है, गौरी राग दे विच पांच शब्द, आसा राग दे विच छे शब्द, गुजरी राग दे विच एक शब्द, सोरठ राग दे विच सत शब्द, तनासरी राग दे विच तीन शब्द, जैतसरी राग दे विच एक शब्द, सूही राग दे विच तीन शब्द, बिलावल राग दे विच दो शब्द, गौंड राग दे विच दो शब्द, रामकली राग दे विच एक शब्द, मारू राग दे विच दो शब्द, केदारा राग दे विच एक शब्द, भैरव राग दे विच एक शब्द, बसंत राग दे विच एक शब्द, ते मलार राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है जी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज हन। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध शब्द जेड़े है वह है, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, तू मैं हां मैं तू हां साडे विच की फर्क है। जिवें कि बेगमपुरा शहर का नाओ, बेगमपुरा शहर का नाम है जिथे कोई गम नहीं, मेरी संगत पोच पोच दिन राती, मेरी संगत हमेशा रब दे नाम विच लीन रहिंदी है। संत तुझी तन रंगत प्राण, संत दी भगती नाल ही जीवन सुखी हुंदा है, तुम चंदन हम इरंद बापुरे, तू चंदन है मैं एक छोटा जिहा बूटा हां। जी दोस्तो, साडे नाल दिल्ली तो आराधना सिंह जी जुड़े हन, जो कि 41 दे 41 शब्द उन्होंने गाए हन, उन्होंने याद किते हन, ते असी उन्हां दा ते एक शब्द थानू असी सुनाने हां, जो कि क्योंकि वो साडे नाल लाइव होके गा रहे हन, ते असी उन्हां दा एक रिकॉर्डेड जिहड़ा शब्द है वह थानू सुना रहे हां जी। जी सुनो जी।

0: ताहाले चेरावो ताहाले चेरावो ताहाले चेरावो।
1: हाँ जी, गुरु रविदास या रायदास 15वीं तो 16वीं सदी दे दौरान भगती लहर दे एक भारतीय रहस्यमयी कवि सन। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब ते हरियाणा दे आधुनिक खेत्रां विच एक गुरु जो अध्यात्मक अध्यापक वजो सत्कारिया गया। ओ एक कवि, समाज सुधारक ते अध्यात्मक हस्ती सन। गुरु रविदास जी ने गुरु नानक देव जी दे नाल मिलके गुरुद्वारा साहिब दी स्थापना कीता सी। गुरु रविदास जी दे जीवन दे वेरवे अनिश्चित अते विवादपूर्ण हन। ए बड़ी अफसोस दी गल है, जेडे लोग अपने आप नू गुरु रविदास जी दे समझदे हन, वारस समझदे हन, ते उना दी याद दे विच, उना दी भगती दे विच बड़े बड़े जिन्हां ने गुरुद्वारे उसार रखे हन, मगर सिर्फ ए ता है नहीं कि ए मतलब कि 2-4-5 हजार साल पहला पैदा हुए सी, अजे थोड़े ही सैकड़े साल की गल है। फिर भी असी इना दे बहुत सारे इना दे जीवन दे बारे विवाद हैं, असी इना दे एक जन्म बारे भी एक एक जेड़ी पर्टिकुलर एक मिति नहीं असी कर पाए, डिसाइड कर पाए जी। विद्वान मानते हैं कि वह 1433 ईस्वी विच पैदा हुए सन, उन्हां दी जात या लिंग दियां समाजिक बंडा नूं दूर करन दा उन्होंने उपदेश दिता, ते व्यक्तिगत अध्यात्मक आजादी की प्राप्ति विच एकता नूं अगे वधाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जाने जांदे सिख ग्रंथ विच गुरु रविदास जी की भगती बाणी शामिल की गई है। हिंदू धर्म के अंदर दादू पंथी परंपरा के पंच बाणी पाठ विच भी रविदास जी दियां बहुत सारियां कवितावां शामिल हन। ओ रविदासिया धर्म लहर दी केंद्री हस्ती भी सन। जी दोस्तो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट, थोड़ा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलाइना दे शहर डुरम तो। दोस्तो, अज थोड़े नाल असी साझा कर रहे हैं जी श्री गुरु रविदास जी दे शब्द ते उन्हां दे जिंदगी दे बारे कुछ जानकारियां, जो कि साडे नाल दिल्ली तो आराधना सिंह दिल्ली जी, दिल्ली वाले हाँ जुड़े हुए हैं। जो मैं थोनू शब्द सुना रहा हाँ वह उन्हां दे फेसबुक आराधना सिंह दिल्ली वाले तो मैं लै रहा हाँ, ते नाल नाल असी उन्हां दे लाइव उन्हां नू नाल जोड़ के उन्हां दे मुखारबिंद तो भी असी जो अनरिकॉर्डेड शब्द हाँ बिना संगीत तो भी शब्द असी सुन रहे हाँ जी, ते थोनू फर्क पता लग ही गया होगा कि संगीत दे नाल गाउण नाल ते बिना संगीत दो गाउण दे विच की फर्क हुंदा है। ए सिंगर है ना, ए गायका चाहुंदी है कि इन श्री गुरु रविदास जी दे 41 दे 41 शब्द रिकॉर्ड करके ओह उन्हां दे मन्नण वालियां नूं उन्हां दे पैरोकारां दे सामने प्रस्तुत करो, मगर अज दे सोशल मीडिया दे जमाने दे विच एक समस्या आ जांदी है। जिस हिसाब दे नाल सब कुछ महंगा हो गया है, उस तरह ही स्टूडियो दे विच जाके रिकॉर्डिंग करना भी एक बहुत महंगा सौदा है, जबकि एक आम जो किसी आम आदमी दे बस तो बाहर है। तो सारे नूं गुजारिश है कि अगर तुसी थोड़ा थोड़ा ऐसा सहयोग करो ते असी सब मिलके ए 41 दे 41 जिहड़े शब्द है गुरु रविदास जी दे ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਆਰਾਧਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕਿਆ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ।

0: हां जी, सतगुरु रविदास जी दे पिता श्री मान संतोख दास जी ते माता श्रीमती कलसा देवी जी सन। उन्हां दा ब्याह 12 साल दी उम्र विच पिंड मिर्जापुर दी माता लोना देवी नाल होया। उन आप जी दे घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिस दा नाम विजय दास रख्या गया। सतगुरु रविदास जी चमार वजो शनाखत करदे सन अते पेशावर जानवरां दे चम दा काम करदे सन। हिंदू वर्ण मुताबक चमार कमजात बरादरी है। इस सिस्टम दे असर कारण गुरु रविदास जी महाराज नू विद्यालय जाके इलम हासिल करन दा हक नहीं सी। चमार बरादरी नाल तालुक होण दे कारण बनारस विच मजलूमां लई आवाज बुलंद करन करके सतगुरु रविदास जी नाल बद सलूकी कीती गई। सांझी वालता दा सुनेहा दिंदिया ए उस समय दी लोकाई विच मौजूद ऊच नीच छुआ छात ते पखंड दे सख्त खिलाफ बोले। दक्षिणी एशिया दुआले दूर दराडे सफर कर गुरु रविदास जी ने रबी शख्सियत नाल मुलाकातां दे नाल रब दी सिफत बंदगी दे वाक सच इलाही सुनेहा दिता। राजा पीपा, राणी मीराबाई, राणी चालाबाई ते होर भी इना दे कई मुरीद सन। जी आराधना जी, अगला शब्द तुसी केड़ा सुनोगे जी?
1: जी, वैसे तो मैं सारे शब्द सारे दो दो बज जांदे सी सानू, सवेर दे चार भी बज जांदे सी सर। एक शब्द नू गांदिया गांदिया उदे मायनिया नू समझना, फिर उदे उच्चारण नू खास करके उच्चारण अगर थोड़ा कम्पलीट है तो फिर तुसी शब्द गा सकते हो। फिर मैं सारा कुछ मैनू राकेश जी ने दसिया क्योंकि मेरे शब्दों के सीनियर वह सी और गजलों की और फिल्मी गाने की मैं उन्होंने सीनियर सी, इस करके साड़ी म्यूचुअल बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सी। तो सारे शब्द एक एक लाइन मैं समझाते इनू इदा कहना इनू इदा कहना। तो यह जरा शब्द हूं मैं सुना लगी हाँ, ये गुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे ने, खूब भरियो जैसे दादरा कुछ देश विदेश ना बोझ, ऐसे मेरा मन दिखिया बिमोया कुछ आरा पार ना सूझ। और बहुत सोना शब्द है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये भी अपना रिकॉर्ड करना है, आप सब का सहयोग रहा, आप सबका आशीर्वाद देना तो जरूर वहां पर रिकॉर्ड करांगे। सो मैं ये आप सब सबन करा रही हूँ, आप सबन कर लू।

0: आई हो पुत्रा, ऐसी नचतु है मिट्टी को पुत्रा, ऐसी नचतु है मिट्टी को पुत्रा, ऐसी नचतु है। जय गुरु जी।
1: हां जी, गुरु रविदास जी दा समाज ते प्रभाव बहुत ही गहरा ते क्रांतिकारी सी। उन्होंने जात पात दे भेदभाव नूं चुनौती दित्ती अते मनुखी समानता दा संदेश दित्ता, जिस नाल दबे कुचले वर्गां नूं आत्म सम्मान ते हक लई खड़ा होण दी प्रेरणा मिली। उन्हां दी गुरबाणी ने लोकां नूं रस्मां ते अंध विश्वासां तों मुक्त करके रब नाल सिद्धी भगती दा राह दस्या। बेगमपुरा वर्गे शब्दा राही उन्हां ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिस विच कोई गम नहीं, कोई जात पात नहीं, सब नूं न्याय मिलता है। उन्हां दे उपदेशा ने भगती अंदोलन नूं मजबूत किया। मीराबाई गुरु नानक वर्गे महान संतां नूं प्रभावित किया। अज भी गुरु रविदास जी दीआं सिक्ख्यावां समाजिक न्याय, समानता अते मनुखता लई प्रेरणा दा स्रोत हन अते लोकां नूं भाईचारे ते रूहानी चानण वल तुरन लई प्रेरित करदियां हन। जी दोस्तो, नमस्ते सलाम। अज दे खेड़ा लाइव शो दे विच बस इन्ना ही। आराधना जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसी अपने कीमती समें दे विचों समां कढ़िया ते श्री गुरु रविदास जी दे शब्दां राही साडे स्रोतियां नूं निहाल कीता। जी असीं आशा करदे हां कि साडी इह सांझी कोशिश तुहानूं पसंद आई होवेगी। जी आराधना जी, लास्ट एक मिनट विच की कहना चाहोगे?
0: जी मैं यही कहना चाहांगी कि गुरु रविदास महाराज जी दे चरणां च सारे जिनी सृष्टि दे लोक ने सारी संगत जुड़ी रवे और बाणी सुनदे रहन, बच्चा नूं भी सिखाउण और घर घर बाणी सुनाई जावे, बच्चा नूं भी सिखाई जावे, आप भी सुनिया करो। बाणी तो बद के मैनू कोई भी लिरिक्स अच्छा नहीं लगता, वैसे प्रोफेशन है साडा गाना बजाना सर, इस करके गीत गजल भजन गाई दी, लेकिन जो शब्द बाणी च आनंद है ना, सिक्ख्या भी है और तुहानु बल भी मिलता है और पूरी तुहानु ऊर्जा मिलती है बाणी पढ़न नाल। ते मैं तो यही कहांगी कि बाणी पढ़िया करो, सुनिया करो और एक दूसरे नाल बाणी बारे ही चर्चा होनी चाहिए। आप जी का अनेक अनेक धन्यवाद, तुसी इन्ना समय मैनु दिता अपने अनमोल समय चो, और मैं प्रभात रेडियो दी हमेशा आभारी हां, हमेशा आभारी हां और हमेशा आभारी रहांगे। और साडे जिहड़े श्रोता सुन रहे ने, आप सब नूं बड़े अदब बड़ी आदती नाल सति श्री अकाल, और इसे तरह आप सुपरवाइज रेडियो नाल जुड़े रहो, साडे केड़ा साहब जी दे नाल प्रोग्राम सुनदे भी रहो और अपनी गल भी अपने विचार भी सांझे करिया करो। मैं तो यही कहूंगी सर, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद आराधना जी, धन्यवाद जी। हां जी दोस्तो, बस खेड़ा लाइव शो दे विच बस अज इन्ना ही, फिर एक नवा प्रोग्राम जानकारियां भरपूर लैके थोड़े नाल असी जुड़ांगे जी।

0: जब मैं मैसेज करता हूँ करता हूँ लो जी मैसेज कर दी डॉक्टर साहब
1: जनहित विच सूचना मशहूर होम्योपैथिक सर्जन डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू उम्र दे 75वीं साल दे विच मेडिकल प्रैक्टिस दे 50 साल पूरे होण ते अमेरिकन इकॉनमी दी सब तो माड़ी हालत होण करके ए ऐलान करदे ने कि हरेक बीमार व्यक्ति जो किसी भी उम्र दे विच किसी भी बीमारी दा इलाज करांदा थक गया है तां जो भी उसकी जेब इजाजत दिंदी होवे ओही दे के इलाज करवा सकता है। बस इना ख्याल रखियो कि मुर्गी भी ना मरे ते अंडे भी मिलदे रहन, इना दे इलाज करन दी समर्था बनी रहे ते थोड़ा घट खर्चे च इलाज हुंदा रहे। कॉल करो 408-687-1899।
0: ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ

रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: नहीं दोस्तों, अगला गीत सुनते हैं जी, मलकी कीमा। क्या बात है, बहुत फेमस सॉन्ग सी उस टाइम दे विच, बहुत ज्यादा इनू लोगों ने सुनिया। और आप मलकी कीमा थोड़े नाल पेश कर दे जी, मोहम्मद सदीक साहब ते रंजीत कौर।
1: कीमा रांझे दा भतीजा गढ़ मुगलाने दे सरदार राय मुबारक दी लड़की मलकी दे नाल व्याया गया। निक्किया निक्किया दा व्याह हो गया, जवानी आई ता दोहां दे हुसन जवानी दी चर्चा गली गली महल्ले महल्ले घर घर होण लगी। मलकी दियां सहेलियां मलकी नूं आखदियां, अड़िए मलकीए तेरा कीमा असीं कोरियां ते बैठा वेख्या सी, बड़ा सोहणा सी, हुण तां गभरू होके होर भी सोहणा लगदा होणा। ओधर बचोलन कीमे नूं आख्या करे, अड़िया कीमिया तेरी मलकी हजारां नहीं बल्कि लखां चेक है, वेंदियां सार इंसान तां की परिंदे वी काटा के पैंदे। एक दूजे दे हुसन दी तरीफ सुन दे, एक दूजे उत्ते आशक हो गए, सबबी मेले हुंदे ने। एक बारी कीमा गढ़ मुगलाने नूं जा रहा, रास्ते दे विच एक खूह दे उत्ते कुछ कुड़ियां पानी भरदियां ने, उन्हां विच मलकी भी सी। मलकी दा हुसन वेख के कीमा खूह ते गया पानी मंगदा उन्हां कुड़ियां तों, तां उन्हां कुड़ियां दी सरदार ओ हुसन दी मलका मलकी नूं तोड़ के जवाब दिंदी है। जरा गौर नाल सुनना की जवाब दिंदी है।

सोचा सोच के सिफर नतीजा चिंता कोई हल नहीं जिस जमया जिस सिरजया तेनू की ओ तेरे वल नहीं नजर मेहर दी रखे तेरे ते ओले करदा पल नहीं।

0: मशहूर होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू उम्र दे 75वीं साल दे विच मेडिकल प्रैक्टिस दे 50 साल पूरे होण ते अमेरिकन इकॉनमी दी सब तो माड़ी हालत होण करके ए ऐलान करदे ने कि हरेक बीमार व्यक्ति जो किसी भी उम्र दे विच किसी भी बीमारी दा इलाज करांदा थक गया है तां जो भी उसकी जेब इजाजत दिंदी होवे ओही देके इलाज करवा सकता है। बस इना ख्याल रखियो कि मुर्गी भी ना मरे ते अंडे भी मिलते रहन, इना दे इलाज करन दी समर्था बनी रहे ते तुहाडा घट खर्चे च इलाज हुंदा रहे। कॉल करो 40 हालत होण करके ए ऐलान करदे ने कि हरेक बीमार व्यक्ति जो किसी भी उम्र दे विच किसी भी बीमारी दा इलाज करांदा थक गया है तां जो भी उसकी जेब इजाजत दिंदी होवे ओही देके इलाज करवा सकता है। बस इना ख्याल रखियो कि मुर्गी भी ना मरे ते अंडे भी मिलते रहन, इना दे इलाज करन दी समर्था बनी रहे ते तुहाडा घट खर्चे च इलाज हुंदा रहे। कॉल करो 408-687-1899।
1: कोई गल नहीं, इट्स ओके। रेडियो सवरंग, रेडियो प्रवास, यूट्यूब, फेसबुक मीडिया पर मुझे सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपका रोजाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रोग्रामों में हम एक दिन प्रोग्राम पंजाबी में करते हैं, दूसरे दिन का एक घंटा जो है हिंदी में होता है, उसके बाद एक घंटा अंग्रेजी का होता है। वही सब्जेक्ट दोहराने की कोशिश की जाती है और हाँ, लफ्ज जरूर अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि मैंने कोई पढ़कर नहीं बोलना होता, मुझे सिर्फ कंटेंट पता होता है कि मैं आज कंटेंट किस पर बात करनी है और उसके बाद लफ्ज मेरे अपने हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो लोग सुनने वाले हैं उनको ये लगेगा कि ये कंटेंट बेशक वही है लेकिन लफ्ज मेरे दूसरे हो जाते हैं, कई बार एग्जांपल्स जो हैं वो भी और नई ऐड हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप रोजाना इन प्रोग्रामों को सुनते रहें। तो हम लोग जीवन से जीवन की उत्पत्ति की जो व्याख्या शुरू की है कथा रूपी, उसमें हम यहां तक पहुंच गए हैं कि शरीर की बनतर तो बन गई है लेकिन इसका शरीर का बेस क्या है। और उस बेस पर पहुंचते हुए हमने ये कहा था कि शरीर का बेस एक सेल है, सिंगल यूनिट जो है जो इस शरीर में काम करती है। उसके लिए हमने गुरबाणी का रेफरेंस दिया था, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, और जो पूरे ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही हमारे शरीर में भी घटित हो रहा है। और जो हमारे शरीर में घटित हो रहा है वो इसके हरेक सेल में भी घटित हो रहा है। और वो जो सेल में घटित हो रहा है इसका मतलब इतने सारे कार्य विहार जो हम शरीर के द्वारा करते हैं, सांस लेते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, मल त्याग करते हैं, दिल का हमारा धड़कना है, डाइजेशन का प्रोसेस है, इतने सारे सिस्टम जो हम लोग नौ सिस्टम काउंट करते हैं, ये पूरे के पूरे नौ सिस्टम अगर हमारे शरीर में चल रहे हैं और इनकी सिंगल यूनिट हम सेल बोलते हैं तो मतलब इसका ये हुआ कि एक सेल में भी ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर में ये सोचते हैं कि भाई कितने सिस्टम हैं, अलग अलग अंग हैं सभी, तभी तो ये पूरा काम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर भी इस तरह की अलग अलग चीजें हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारी है कि वो अलग अलग तरह का काम पूरा करेंगे। और अगर हमारे शरीर पे ऐसा कोई दिखाई देता है कि ये काम पूरा नहीं हो रहा, ये कमी पेशी वाला है, ये शरीर नॉर्मल नहीं है, दूसरे लफ्जों में कहें कि बीमार है, तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेट उस सेल में कुछ ना कुछ ऐसी कमी पेशी आ गई है। और सेल का मतलब ये है कि सेल के किसी उस डिपार्टमेंट में, किसी उस अंग में, किसी उस ऑर्गेनल, उसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में, उस ऑर्गेनल में इस तरह की कोई कमी पेशी आ गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि वो काम पूरा नहीं चल रहा है। और इस लिहाज से हमने इस सेल की शिनाख्त करनी शुरू की। और सेल की जब हमने शिनाख्त शुरू की तो फिर हमने ये देखा कि भाई सेल के अंदर जाने के लिए बाहरी एक दीवार है, और बाहरी जो एक दीवार हम देख रहे थे उस दीवार के बारे में जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन बताया था, वो जो सेल मेम्ब्रेन था उसकी बात मैंने आपसे की थी कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्या है, और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन मैंने जो दूसरे अंग्रेजी और पंजाबी के प्रोग्रामों में दी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसमें हमने ये कहा था कि ये दो तहों का बना हुआ होता है, दो मेम्ब्रेन होते हैं, उसके बीच में कुछ जगह होती है और उस जगह में थोड़ा फ्लूड भरा रहता है, कुछ तरल रहता है, ताकि सेल को काम करते करते कुछ फैलना पड़े, सेल को कुछ बाहर निकालने के लिए सुकड़ना पड़े। अगर सुकड़ेगा तभी ना उससे कुछ बाहर निकलेगा, और फैलेगा तभी ना उसमें कुछ अंदर आएगा, या ऐसे कहें कि अंदर आएगा तो उसको फैलना पड़ेगा, अगर उसको कुछ बाहर निकालना है तो उसको सुकड़ना पड़ेगा। तो ये जो काम उसमें चलेगा, उस काम की वजह से ये दोनों मेम्ब्रेन जो हैं वो आपस में टकरा ना जाए, उससे रगड़ पैदा ना हो, उससे कोई और प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कुदरत ने उसमें एक फ्लूड रखा हुआ है जिसको हम लोग सैनेवल फ्लूड बोलते हैं। और इस फ्लूड और इस मेम्ब्रेन के बारे में हमने आप सब लोगों को बता दिया कि ये आमतौर पर प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है, और प्रोटीन और लिपिड की डिफरेंट कंसिस्टेंसी है, अलग तरह का घोल है जो मेम्ब्रेन बनाता है, और अलग तरह का घोल है जो इसके बीच रहने वाला जो लिक्विड है वो बनाता है। तो इस तरह ये पूरे का पूरा मेम्ब्रेन एक दीवार की तरह काम कर रहा है, लेकिन इस दीवार की डिफरेंसेस, इस दीवार का दूसरी दीवारों से फर्क क्या है? दूसरी दीवारों में तो किले की दीवार होती है तो उसमें दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे से ही हम अंदर जा पाते हैं, दरवाजे से ही बाहर आ पाते हैं, लेकिन ये इस तरह का किला है जिस तरह आप अंडा देखते हो ना, तो अंडे को आप देखो तो चार चीज उसका अंदर का घोल है वो बाहर तो आ ही नहीं रहा है, और अगर बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है दीवार पूरी बंद है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अंदर से बाहर कुछ जाता है तभी अंडा बड़ा होता है, बाहर से कुछ अंदर जाता है तभी अंडा बड़ा होता है। तो ये सब चीजें इस तरह होती हैं, आम अंडे में भी जब मुर्गी के अंदर अंडा रहता है तो भी, या हमारे शरीर के सेल में भी ये जो क्रिया होती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की किसी भी पदार्थ की किसी भी चीज को, उसको हम परमीएबिलिटी बोलते थे। और परमीएबिलिटी के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि ये फर्क क्या है। दूसरी दीवारों में तो किले की दीवार होती है तो उसमें दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे से ही हम अंदर जा पाते हैं, दरवाजे से ही बाहर आ पाते हैं, लेकिन ये इस तरह का किला है जिस तरह आप अंडा देखते हो ना, तो अंडे को आप देखो तो चार चीज उसका अंदर का घोल है वो बाहर तो आ ही नहीं रहा है, और अगर बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है दीवार पूरी बंद है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अंदर से बाहर कुछ जाता है तभी अंडा बड़ा होता है, बाहर से कुछ अंदर जाता है तभी अंडा बड़ा होता है। तो ये सब चीजें इस तरह होती हैं, आम अंडे में भी जब मुर्गी के अंदर अंडा रहता है तो भी, या हमारे शरीर के सेल में भी ये जो क्रिया होती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की किसी भी पदार्थ की किसी भी चीज को, उसको हम परमीएबिलिटी बोलते थे। और परमीएबिलिटी के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि ये प्रेशर से काम करती है, प्रेशर से जो

खड़ा होता है। तो ये सब चीजें इस तरह होती हैं। आम अंडे में भी जब मुर्गी के अंदर अंडा रहता है तो भी, या हमारे शरीर के सेल में भी ये जो क्रिया होती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की किसी भी पदार्थ की, किसी भी चीज को, उसको हम परमिएबिलिटी बोलते थे। और परमिएबिलिटी के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि ये प्रेशर से काम करती है। प्रेशर से जो उसकी दीवार बन चुकी है, वैसे तो वो सुकड़ी होती है, उसमें से कुछ ऐसा नहीं निकलता। मान लीजिए एक टायर में कोई किल लग जाता है ना, किसी गाड़ी के टायर में एक किल लग जाता है, और किल जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वहां से बाहर निकलेगी हवा, और अगर वो किल बाहर निकाल दिया जाए तो एक लिमिट पर आकर वो प्रेशर रुक जाएगा कि थोड़ी हवा निकली, उसके बाद वो हवा जो टायर में है वो उतनी रुक जाएगी, क्योंकि तब तक इतना प्रेशर अंदर नहीं रहा कि वो उस सुराख को जहां पर कील लगा हुआ था उसको डायलेट करके हवा बाहर निकल सके। तो इसी तरह की इस चीज को भी हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। दूसरी बात मैंने इसमें एग्जाम्पल दी थी कि हम छाछ छानते हैं ना, दूध से बनी हुई, दही से बनी हुई छाछ जो होती निकलती है, और उसको छानते हैं तो जैसे ही हम ज्यादा प्रेशर देते हैं उससे और लिक्विड निकलता है। पहले तो हम कपड़े से छानते थे ना, आजकल तो अलग अलग तरीकाकार आ गए हैं, लेकिन उस वक्त हम कपड़े से इसको छानते थे, तो कपड़े को जैसा ही आप प्रेशर देते थे उसी तरह ही इसमें वो प्रेशर के साथ वो जो धागे हैं कपड़े के, उस वैसे तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भी आप उसको प्रेशर डालोगे तो धागों के अंदर जो जगह बनेगी उससे लिक्विड बाहर निकलेगा। यही प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर घटित होता है, और इस सेल के अंदर घटित होने वाले प्रोसेस का नाम है हमारा के परमिएबिलिटी। इस परमिएबिलिटी की वजह से ही सेल बढ़ता है, सेल कम होता है, छोटा होता है। ये ऐसे कहें कि हम लोग खुराक खाते हैं, हम लोग जब खुराक खाते हैं तो खुराक हमारी हजम होकर आंतड़ियों से खून में शामिल होती है। उसका प्रोसेस मैंने आप सब लोगों को बताया है कि कैसे हम खुराक खाते हैं और उसमें से कैसे वो आंतड़ियों से हजम होकर और फिर खून में कैसे मिलती है। वैसे ये पूरा एक प्रोसेस था, एक सिस्टम था जो मैंने कई बार इसमें लेक्चर किए, आगे आने वाले समय में फिर दोबारा ये हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना जान लें क्योंकि हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं और वो प्रेशर से खून में रच गया। जितना जितना भी एक्सट्रैक्ट उसका निकला हमारी खुराक का, हमने क्या खाया, कैसे खाया, उसमें जितना भी एक्सट्रैक्ट चाहिए हमें खून में मिलने के लिए, चाहिए इस शरीर को और बड़ा तमीर करने के लिए, या इसकी जो टूटन हो रही है, टूटबाज हो रही है, उसको रिकवर करने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो तत्व इस खुराक से निचड़ कर खून में शामिल होता है। और जब ये खून में शामिल होता है तो फिर ये अलग अलग जगहों पर खून के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, हमारे जो आर्टरीज हैं इसमें प्रेशर बढ़ता है, इसमें टेंशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो इसकी वजह से सेलों के अंदर ये खुराक पहुंच जाती है। सेल के अंदर प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर खुराक खाने के बाद बढ़ जाता है, वो अंदर चला जाता है। जैसे ही एक से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल, तीसरे से आगे के ट्रिलियन सेल हैं हमारी बॉडी में, और ट्रिलियन सेल में ही ये क्रिया उसी वक्त होनी शुरू हो जाती है, इन ए मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। और जब उसके बाद सेल जो हैं इसमें से आई हुई खुराक को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें जो बाकी वेस्ट बच जाता है पूरे का पूरा, हालांकि वेस्ट तो आंतड़ियों ने भी निकाल दिया था, और अब जो उसने बिल्कुल प्योरीफाइड खुराक थी वो ही निकाली थी, लेकिन जैसे हम लोग दही से मक्खन बनाते हैं तो फिर मक्खन को और प्योरीफाई करते हैं, ईट पर रखकर वो घी बन जाता है। ठीक इसी तरह ही हमने खुराक से बिल्कुल प्योरीफाइड वो मक्खन की तरह निकाला और खून में मिला दिया, और खून के बाद फिर वो सेलों में गया, सेलों में प्योरी उसकी और प्योरिटी जो शामिल हुई उसमें फिर वेस्ट बचता ही है। वो जो वेस्ट बचता है, जैसे हमारे मक्खन के ऊपर जो छाछ थोड़ी और आ जाती है उसको निकालते हैं, इसी तरह वो सेल जो है निकालता है। सेल कैसे निकालता है, एक तो खुराक आ रही है, दूसरा उसका गार्बेज बच गया है, अंदर का प्रेशर जो बढ़ जाता है। जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे ऑटोमेटिक

ही अंदर से चीजें बाहर जानी शुरू हो जाती। तो इसी तरह वो जाने वाला खून, वापसी खून, जिसको हम वेनस सर्कुलेशन बोलते हैं, वेनस सर्कुलेशन में ये वापसी वाला गार्बेज जाना शुरू हो जाता है, फिर वो जगह जगह पहुंचता है। इसी तरह ही जो सही गार्बेज निकलना है, पहले तो मल त्याग से निकल गया या पेशाब से निकल गया, अब जो ऐसे आया है इस तरह का गार्बेज ज्यादातर जो है वो पसीने से या सांस से निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का गर्भ निकलने का ये तरीका कार था। ये बात हमने मेम्ब्रेन के बारे में बताई थी, और मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये बताया था कि मान लिया जाए ये दीवार खराब हो जाए, इस दीवार में सुराख हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि बाहर से हर एक चीज जबरदस्ती अंदर चली जाएगी। या ऐसे कहें कि कोई ऐसी चीज हमने खा ली जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ गया, टॉक्सिन हो गया, जहरीला मादा हो गया। जब दवाई खाने के बाद आप महसूस करते हो ना कि लगता है मुझे दवाई फिट नहीं बैठी, एलर्जी सी हो गई है, घबराहट सी हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि उस दवाई में जो चीज आपके शरीर में अंदर जा रही है उसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसकी वजह से वो खून में शामिल हुई, खून से सेलों में शामिल हुई, सेल उसको निकालना चाहता है, निग्लेक्ट करता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तभी हम लोग घबराहट महसूस करते हैं। और इसी की वजह से अगर वो प्रेशर से अंदर जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ और सुराख कर दिया उसने, सुराख को ज्यादा कर दिया उसने, जिसकी वजह से ये अंदर जाना शुरू हुआ, फिर वो उसको निकालने की कोशिश करती। मान लिया जाए अब अंदर चले ही गई है, कोई भी चीज जो शरीर को ठीक नहीं लगती वो शरीर के अंदर चले गई है, मतलब क्या हुआ? मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। मेम्ब्रेन जब डैमेज हो गया तो उसकी वजह से आम तौर पे सबसे पहले जो शरीर से नुकसान होता है, जैसे मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए दूसरे देश पर कोई किसी देश का हमला हो जाता है तो सबसे पहले उसके बॉर्डर की जो सिक्योरिटी होती है ना उसको, या उसके चारों ओर की जो सिक्योरिटी होती है ना उसको डैमेज किया जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी हमारे सेल है, सेलों में भी जैसे WBC है, इसके साथ WBC को खुराक कौन पहुंचाता है, WBC को एक्टिव कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होती है? RBC में होती है, जहरा खून के जो लाल कण होते हैं ना ये उसी में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अटैक कहाँ हुआ? कि जैसे भी मिलिट्री में लड़ाई भी होती है ना तो दूसरी दुश्मन फौज उसकी सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश करती है, और सप्लाई लाइन काटने का मतलब है उसको डैमेज कर दो। तो सबसे पहले अगर मेम्ब्रेन खराब हो गया या कोई चीज जबरदस्ती या जहरीली किसी भी तरह की चीज जो खा ली है वो सेलों में दाखिल हो रही है, तो उस लिहाज से अंदर का निजाम इस तरह बदलेगा। प्रेशर बढ़ गया और उसको वापसी में वो निकालने की कोशिश कर रहा है, और उसका निकलेगा पसीने की वजह से, तेज तेज सांस लेंगे, ये सब क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो एक कंडीशन बन जाती है ना, मेम्ब्रेन खराब होने की जो कंडीशन एक पेशेंट की बन जाती है उसको हम बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। और हेमोलाइटिक एनीमिया जो है ये साबित करता है कि हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा टूट गया है, और अब ऑक्सीजन शरीर की पूरी नहीं हो रही है, और इसी की वजह से हमें सांस फूल रहा है, इसी की वजह से हमें घबराहट हो रही है। इसको निकालने के लिए जो सेल है कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पसीना आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं त्रेली आ रही है, मैंने कोई जहरीली चीज खा ली या दवाई खा ली या फिट नहीं बैठी तो त्रेली आनी शुरू होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सेल उसको निकालने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये गलत चीज मेरे में आ गई है। और उसके बाद अगर कोई चीज टेम्परेरी तौर पे हमारे शरीर में दाखिल हुई तो उसको हमने बाद में बंद कर दिया, तो फिर वो सारा कुछ रिपेयर होना शुरू हो जाता है, नए सेल आने शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जो सेल हैं वो हमारी बड़ी बड़ी जो लंबी बोन है उनमें से बनते हैं, और वो हड्डियां फिर उसको
نہ شروع کر دیتی ہیں. اور آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کوئی زہریلا مادہ یا کوئی بہت زیادہ نشہ یا کوئی ایسا کر لیں تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, ویکنیس آنے شروع ہو جاتی ہے, چلنے پھرنے میں بندہ دوڑنے شروع کر دیتا ہے, بگنا شروع کر دیتا ہے, گرتا ہے. تو یہ سب چیزیں عام طور پہ اس بات کی سوچک ہیں کہ اب بون کو بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے نئے سیل بنانے کے لیے, کیونکہ باہر کے جو سیل سرکولیشن میں چل رہے ہیں وہ ڈیڈ ہو رہے ہیں. تو باری چیز آ گئی ہے سیلوں میں, اس کی وجہ سے وہ سیل زیادہ وہاں مر رہے ہیں, زیادہ ڈیڈ ہو رہے ہیں ضرور سے زیادہ, اور بونز کو سیل بنانے کے لیے اور محنت کرنی پڑ رہی ہے. اسی لیے ہماری ٹانگیں لڑکھڑانا شروع کر دیتی, زہر والی کوئی چیز اندر چلی جائے یا جو چیز ہمیں برداشت نہیں وہ چلی جائے تو ہماری ٹانگیں جو ہیں لڑکھڑانا شروع کر دیتی. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بون کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اب اس طرح کے حالات میں اگر ہم باہری شریر سے دیکھیں, اس کا تو میڈیکل نام تو میں نے آپ کو بول دیا کہ اس کو ہم بولیں گے ہیمولائٹک اینیمیا, کہ بھائی خون کے لال کن ٹوٹ رہے ہیں, شریر میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے, پر وہ زہر تو اندر ہے نا, زہر کی اور کیا نشانیاں ہوں گی, بہت سارا اور نقصان وہ کرے گا. دشمن اگر ہمارے گھر میں آ گیا یا دیش میں آ گیا اور اندر داخل ہو گیا تو بہت سے اور بھی نقصان کر سکتا ہے, اور سی چیزوں کو بھی نقصان کرے گا. تو سب سے پہلا جو امپریشن ہمارے سامنے سے دکھائی دے گا وہ کیا ہوگا کہ ہماری چمڑی جو ہے پیلی ہو جائے گی, کیونکہ اس کو آکسیجن نہیں مل رہی. ہمارے شریر میں جو گلو ہے نا ہیموگلوبن کی, اسی لیے ہے کہ اس میں سفیشینٹ آکسیجن ہے. اگر سفیشینٹ آکسیجن نہیں ہے, اگر کوئلے کو آپ پھونک نہیں مارو گے تو لال نہیں ہوگا, ادروائز اس کے اوپر جو اس کی خاک ہے نا وہ جمنی شروع ہو جائے گی, اور بے شک اس کے اندر آگ رہے لیکن باہر سے وہ لگے گا, اس میں راکھ اس کے اوپر آنی شروع ہوگی, پھونک مارو گے تو وہ کوئلا پھر جلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر پھونک مارنے والی بات ہی نہیں ہے, مطلب آکسیجن ہی کم ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اسی طرح راکھ بننا شروع, باہر سے راکھ ہی دکھائی دے گا, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری چمڑی جو ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے. ہماری چمڑی پیلی ہو جاتی ہے, ہمارے ناؤں ناخن یہ پیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, آنکھ کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیل آنکھیں یہ سب پیلی ہمیں دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پیشاب بھی پیلے رنگ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں ان کا سیدھا سا بات ہے, ایک ہی لفظ میں ہم کہیں تو پھر کہیں گے جانڈس پیلیا, کہ بھائی اس بندے کو پیلیا ہو گیا. اگر تو ایک آدھ بار کی بات ہے تو ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد دوائی ہم نے وہ چھوڑ دی یا وہ زہریلی چیز کھانی چھوڑ دی تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی روزانہ میں اس طرح کی کوئی چیز کھا رہا ہے اس لحاظ میں آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھنی شروع ہو جائے گی, لیور کام کرنا بند کر, جیسے شرابی لوگوں کو بولتے نا کہ بھائی تیرا تو لیور خراب ہو گیا ڈیمیج, اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نشہ جو دوائی چیز آپ اندر دے رہے ہو وہ اتنی زیادہ نقصان دہ ہو گئی ہے کہ اس نے بہت سارا ہیموگلوبن آپ کا توڑ دیا, سیل آپ کے توڑ دیے, جس کی وجہ سے یہ پیلیا ہونا شروع ہو گیا. اور اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لیور میں جتنا بھی خون جاتا ہے اس میں سے جتنا بھی آئرن ہوتا ہے وہ آئرن وہاں توڑ دیتا ہے, اس کا کام یہ ہے کباڑیے کی تو کہے کہ جو چیز اس کے پاس آئی اس کو پیس پیس کر دے گا, توڑ دے گا, اور اس میں سے جو ضروری چیز ہے وہ خرید لے گا, اسی سے اس کی دکانداری چلتی ہے. اور جو اس کے پاس زیادہ بچ جائے گا وہ زیادہ بھیج دے گا خون میں, اگر کوئی کم ہے تو اس کو کم بھیجنا پڑے گا. اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آئرن تو بہت ٹوٹ گیا, ہیموگلوبن تو بہت ٹوٹ گیا, اس کا مطلب جتنا زیادہ آئرن ٹوٹے گا اتنا زیادہ ہی اس میں بلی روبن بلی ورڈن بنے گا, ان کو ہم بولتے ہیں بائل پیگمنٹ اور بائل سالٹ. یہ بائل پیگمنٹ بائل سالٹ اتنے زیادہ بن جائیں گے اور اتنے زیادہ ہو جائیں گے لیور میں تو کیا کرے گا, وہ زیادہ خون میں بھیج دے گا, زیادہ خون میں بھیجے گا تو ہمارا رنگ پیلا, آنکھیں پیلی, پیشاب پیلا, ہونٹ پیلے, ناخن پیلے, یہ سب ہونا شروع ہو جائے گا. اور آٹومیٹیکلی جب آکسیجن کی کمی آ جائے گی تو پھر انرجی کا لیول بھی ہمارا لو ہو جائے گا, اور پھر تھکاوٹ
जल्दी थकावट, फटीग जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, थकावट होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा काम करो या सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, घबराहट होती है, थकावट हो जाती है, वैसे भी चलने में जो है वो सांस फूलना शुरू हो जाता है, जो पहले काम आप कर सकते हैं अब वो नहीं कर पाते हैं। ये सब चीजें बताती हैं कि अंदर मेम्ब्रेन की दीवार टूट गई। बाहर जा ऐसे कहें कि बाहर का प्रेशर किसी चीज से इस तरह बढ़ गया कि बाहरी चीजें जो नहीं चाहिए थी सेल को, वो भी सेल के अंदर पहुंच गई। क्योंकि हर चीज जो अनवांटेड है, जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, वो अगर सेल के अंदर जाए, इधर आलू ही ज्यादा खा लें, पोटैटो ज्यादा खा लें, आप परोठे ज्यादा खा लें, तो फिर आप लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर देते। क्यों लेने शुरू कर देते? क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही। हर एक चीज चाहे वो जरूरी है, खुराक का अंग है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज अंदर चले जाती है तो वो इस तरह का हालात पैदा करती। गन्ने ज्यादा चूप ले, ये ज्यादा रसगुल्ले ज्यादा मीठे खा लिए, तो फिर भी उनको ऐसे थकावट, घबराहट, वीकनेस आनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि शुगर ज्यादा अंदर चलेगी, शुगर ज्यादा अंदर चलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा बाहर चलेगी, हेमोग्लोबिन ज्यादा टूट गया, उसकी वजह से ये होगा। हालांकि शुगर बहुत जरूरी है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए या सेल बनाने के लिए, एनर्जी क्रिएट करने के लिए शुगर बहुत जरूरी है, लेकिन आपने ओवरलोडिंग कर दिया। जब आप ओवरलोडिंग कर देंगे तो आपने एक बात मैंने आपको इसको याद रखने के लिए बताऊं कि अगर आप किसी पार्टी पर चले जाओ ना, तो जितना हम घर में खाते हैं उतना नहीं खाते, उसे कई कई गुना ज्यादा खा जाते। ये भी खा लो, वो भी खा लो, इतने रसगुल्ले खा लो, इतनी मिठाई ये खा लो सब। और दूसरे दिन पार्टी से रात आए थे, दूसरे दिन काम पर जाने को मन नहीं करता। मजबूरी हो तो लोग जाते जरूर हैं, लेकिन ये बोलते यार नहीं, मन नहीं करता, बड़ी थकावट सी है, पता नहीं पार्टी में गए थे, ऐसे हो गया, इसलिए हो गया। एक्सरसाइज तो फ्रेश करती है ना, अगर नाचे हैं, कुछ ऐसा किए हैं तो फ्रेश होना चाहिए ना, लेकिन फ्रेश नहीं है। क्यों नहीं है? कि जितनी कैलोरीज आपके बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा आपके शरीर में चली गई है, और उसने आपकी ऑक्सीजन का जो काम था वो कम कर दिया है सेल में, जिसकी वजह से थकावट होती है, रुकावट होती है, तो ये फटीक वगैरह होनी जो आम तौर पे शुरू हो जाती है। अब ये काम मेम्ब्रेन का, हम सिर्फ मेम्ब्रेन के डैमेज की बात कर रहे हैं हिंदी में। मेम्ब्रेन का डैमेज होना अगर तो टेम्परेरी है तो थोड़ी देर बाद सेट हो जाता है, थोड़े दिनों में सेट हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज लगातार शरीर में जा रही है तो उस लिहाज में आम तौर पे क्या होगा? पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, या ऐसा कहें कि तिली बढ़नी शुरू हो जाती है। कोई भी चीज अनवांटेड चली जाए शरीर के अंदर, जिससे आपका हेमोग्लोबिन ज्यादा टूटना शुरू हो जाए, तो उस लिहाज से ऐसा होगा कि भाई सेल ज्यादा टूट गए हैं, जिसकी वजह से सेल की रिपेयर की, क्योंकि ऐसे मैं बोल दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि जितने भी सेल बोन बनाती है ना, लंबी लंबी बोन जितनी भी है, ये हमारे सेल बनाती है ना, सिर्फ ये खून में छोड़ देती है। ये सब खून में छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचते हैं? सर्कुलेट करते करते करते करते तिली के पास पहुंचते, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन में पहुंचते हैं। स्प्लीन एक इनका इस तरह का डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस है, जिस तरह रिक्रूट को भर्ती किया गया, उसको पूरी 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर उसको देखा गया कि अब इसको बॉर्डर पर लड़ाई के लिए भेजा जा सकता है कि नहीं जा सकता। और जो पूरे ट्रेंड होते हैं वो पास कर जाते हैं रिक्रूटिंग ट्रेनिंग, और फिर उसको वापस भेज जाए। वो पास कौन करेगा? वो स्प्लीन है हमारी। खून के सेलों को स्क्रूटिनाइज करने के लिए, या उनको ये देखने के लिए कि कितने सेल नॉर्मल हैं जिनको आगे खून में काम करने के लिए भेजा जा सकता है, और अगर वो देखें कि इसमें जो सेल हैं ये काम करने लायक नहीं है, सर्कुलेट करते करते बोन ने बनाए सेल, खून में छोड़ दिए, चलते चलते सर्कुलेशन में जितने भी वो खून के जरिए स्प्लीन तिली के पास पहुंचते हैं वो उनको फिर फिल्टर करती है, जो नॉर्मल सेल हैं उनको फिर सर्कुलेशन में भेज देती है, जो नॉर्मल सेल नहीं है उनको वहां रोक लेती है, उनको या तो डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसको बोलते हैं फेगोसाइटिक फंक्शन।
खा जाना, खत्म कर देना, उसको खत्म कर देती, नहीं भी तुम चलने लायक नहीं हो, तुम नहीं मिलिट्री में बॉर्डर में नहीं जा सकते, तुम ट्रेन नहीं हो पूरी तरह, उनको वो वहां खत्म कर देती है। और फिर जो नए सेल आने शुरू हो जाते हैं फिर उनको स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर देते। अब हम बात ये कर रहे हैं कि अगर किसी ने इस तरह की जहर, इस तरह की दवाई या इस तरह की कोई चीज रोजाना ही खा रहा है बंदा, और उस रोजाना उसके शरीर में जा रही है, तो अल्टीमेट रोजाना ही लिव तिली को वही काम करना पड़ रहा है। सेल तो बन रहे हैं, तिली उसको फिल्टर भी कर रही है, नए नए बढ़िया सेल जो है उनको वो भेज रही है सर्कुलेशन में, लेकिन बाकी स्टोरेज ज्यादा बच गया। बाकी अगर स्टोरेज ज्यादा बच जाएगा तो फिर तिली बढ़नी शुरू हो जाएगी बाईं तरफ पसलियों के नीचे। आम तौर पे वो तिली हमें दिखाई नहीं देती, अगर दबा कर आप देखोगे ना पसलियों के नीचे तो वो तिली दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनकी ये प्रॉब्लम हो, चाहे बाहर से कोई चीज अंदर जा रही है जहरीली, चाहे अंदर से किसी अंग की खराबी से वो जहर बन रहा है, इसको इंडोटॉक्सिन बोलते हैं। दो तरह का जहर मैंने आपको बताया था, एक तो आपकी खुराक के साथ जा रहा है जो बाहर से जा रहा है उसको हम बोलते थे एग्रोटॉक्सिन, और एक ऐसा है किडनी खराब होगी, किडनी खराब होगी अब उसमें यूरिक एसिड फिल्टर नहीं हो रहा है, वो जहर के तौर पर शरीर में दाखिल हो रहा है। इसी तरह ही अलग अलग अंगों में अगर उनका निकास नहीं पूरा हो रहा गार्बेज का, वो खून में चला गया तो वो भी एक जहर का काम करता है, इसको हम बोलते हैं इंडोटॉक्सिन। तो सेल से बाहर से भी कोई जहर जा सकता है, अंदर से भी कोई सेल जहर जा सकता है, लेकिन काम उनका वही होगा कि वो सेलों को ब्रेक करेंगे, किडनी जो स्प्लीन है उसका काम बढ़ जाएगा, उसका काम बढ़ जाएगा, पर उसकी अपनी काम करने की समर्थता है, एक लिमिट है ना कि कितना वो खून साफ कर सकती है, और उससे ज्यादा सेल टूटना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा जहर खा लिया या बार बार खा लिया, अल्टीमेट उतने बोन सेल बना नहीं रही जितने सेल आगे चाहिए, और उनमें से भी डैमेज सेल है, उनमें भी पूरे ट्रेंड फौजी नहीं है, तो वो क्या करेगी, स्प्लीन के पास स्टोरेज इतना नहीं रहेगा और वो बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा, तो वो तिली जो हमारी पसलियों के नीचे हमें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, इसको बोलते हैं हुडकिंस डिजीज। और फेगोसाइटिक फंक्शन जो उसका था कि कितना खा लेगी बेचारी, कितना हजम कर लेगी, कितना बर्न आउट कर देगी, पुलिस वाले पकड़ते हैं ना, ड्रग वगैरह पकड़ते हैं तो फिर कई बार उसको बर्न करते हैं, बंद कर दे माल खाने का सामान निकाल कर उसको बंद कर दे, या कहीं और मार्केट में ना जाए या कहीं ऐसा ना हो। सो उसलिए ये तिली का काम है कि उसके पास जितना गार्बेज बच गया, एक्स्ट्रा गार्बेज हो गया, अब उसके पास स्टोरेज नहीं है, तो फिर वो उसको कितना बर्न करेगी, बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर तिली बढ़ जाती, वो गार्बेज बढ़ गया तो तिली। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी का सेल का मेम्ब्रेन किसी कोई जहरीली मादा अंदर जाने की वजह से, या इवन खुराक का ही ऐसा हो गया जो खुराक नहीं चाहिए वो आप खा रहे हैं उसकी वजह से हो गया, या अंदर कोई किसी को किसी अंग का कैंसर हो गया या किसी अंग की खराबी होगी, अंदर से टॉक्सिन बन रहा है और वो सेलों में जा रहा है, तो उसकी वजह से अगर सेल ज्यादा टूट रहे हैं, एक तो मैंने बता दिया कि पीलिया हो जाएगा, रंग पीला हो जाएगा, पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, नौ पीले होने शुरू हो जाएंगे, ये आंखें पीली होनी शुरू हो जाएंगी, ये निशानी होगी। दूसरी मैंने आपको ये बात बताई कि अगर इस तरह की कंडीशन आए, ये हमें बताएगी कि नुक्स कहाँ है सेल मेम्ब्रेन में, कि पीली बढ़ जाएगी, पीली बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई पुरानी बीमारी का मरीज हो ना, जस्ट फॉर कैंसर आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं, किसी का कैंसर हो ना, तो जिस जगह का कैंसर हो सबसे पहले वहां के एरिए के नजदीक जितने भी लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड वो हैं जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, सेलों से गार्बेज इकट्ठा करते करते करते करते खून को साफ करते हैं, कि खून तो नॉर्मल स्पीड से चलता रहे, वापसी जाने वाला आने वाला खून फ्रेश है वो सीधे जा रहा है, वो जीटी रोड है उसमें कोई लाइन कोई ट्रैफिक लाइन लाइट नहीं है रुकने वाली, वो सीधा सेलों में जा रहा है, सेलों से जो वापसी आता है उसमें जगह जगह ब्रेकेज है, जैसे पुलिस कटा रहता है, उसमें जितना भी गार्बेज या जितना भी इस तरह की चीजें होती हैं जो खराब सेलों के या खराब अंग से ज्यादा गार्बेज बन के निकल रहा है उनको जगह जगह रोकती है ट्रैफिक, इनको चेक करेंगे भाई इसके कागज पत्र पूरे हैं कि नहीं है, वो पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स।
और लिम्फ नोड भी अगर बहुत ज्यादा खराबी आनी शुरू हो जाए तो कितनों को कंट्रोल करेंगे? अगर एक मोटरसाइकिल आ गया तो उसको रोक लिया, अगर ज्यादा मोटरसाइकिल आ जाएंगे तो फिर कितने के सिपाही वहां होंगे, कितने को उसको कंट्रोल करेंगे? हर लिम्फ नोड की अपनी अपनी कैपेसिटी है, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो लिम्फ नोड फूलने शुरू हो जाएंगे। अगर लिम्फ नोड का सीधा चैनल है वो कहां जाएगा? तिली में। अब तिली भी बेचारी ऐसी है कि बेकाबू हो गई है, तो इस लिहाज से हम लोग चेक करते हैं कि कहां कहां लिम्फ नोड बढ़ गए हैं। ये साबित करता है कि किधर से बीमारी आ रही है, किधर से ये लिम्फ नोड बढ़ रहे हैं, और अल्टीमेट स्प्लीन तिली तक पहुंच गए हैं। अब हमारी तिली भी बढ़ गई, वो जो तिली का बढ़ जाना है वो इस बात का सूचक है कि आपके सेल का मेम्ब्रेन नॉर्मल नहीं रहा। उसके बाद अब मान लिया जाए जो चीज हमें नहीं चाहिए वो अगर शरीर में दाखिल हो गई, सेलों में दाखिल होगी, मैं इसकी और एग्जांपल आपको दूं, दूध है ना, दूध में बिगड़े चाटा दूध का कांजी की कुफे, कांजी की एक बूंद अगर डाल दो दूध में तो वो पूरे का पूरा दूध खराब कर देते, क्या बन जाता? पनीर बन जाता। जैसे हम पनीर बनाते हैं ऐसे घर में उसमें नींबू डाल देते हैं या कुछ और चीजें डाल देते हैं जिससे दूध फूट जाता है, पानी अलग हो जाता है और उसमें जो थिक मटेरियल है वो अलग हो जाता है। और अगर किसी सेल में इस तरह की कोई चीज चले गई तो वो क्या करेगी? अंदर का जो मटेरियल था उस सारे मटेरियल को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, दूध मान लें है जी, दूध का चाटा है ये, जो पूरा सेल है ये एक चाटी है दूध की, पॉट है, और उसमें जितना अंदर है जो भी कुछ है उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था, उसको अब दूध मान लें। और अब इसमें कोई इस तरह की चीज आ गई जिसको हम कांजी की तरह बहे, जिसको हम खट्टे की तरह नींबू की तरह बोले, तो वो क्या कहेगी? वो अंदर के दूध को फुटा देगी। अंदर का दूध फुट गया, अब क्या होगा? सेल के अंदर इस तरह की कंडीशन जब बन जाएगी तो सभी चीजें जितनी भी उसके अंदर और काम करने वाले डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेंगी। यहां तो आग फैल गई है, अब सब सेपरेट हो जाए। तो वही काम जब इस तरह होना शुरू हो जाता है तो जितने भी सीरम हैं, जितने भी सिक्रीशन इस शरीर से बन बन कर शरीर को हजम करने के लिए निकलते हैं, उनको एंजाइम्स बोलते हैं हम लोग। जैसे पेट में HCL निकलता है या पेप्सिन निकलती है या बाइल निकलता है लिवर से या पैंक्रियाज से, इंसुलिन निकलती है, एंट्रोकनाइज आंतड़ियों से निकलती है, इनको हम एंजाइम्स, मुंह में निकलता है टाइलन। तो जितने भी ये एंजाइम निकलते हैं ना, ये पूरे के पूरे इस तरह हो जाते हैं जैसे दूध फूट गया हो। दूध फूट गया है क्योंकि सेलों के अंदर इस तरह की कोई चीज चली गई कि वो अंदर का निजाम, अंदर का जो दूध नॉर्मल नहीं रहा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये फूटना शुरू हो जाएगा तो फिर अलग अलग थक्का बन गया ना, अलग अलग वो जमना शुरू हो गया ना, जिसको हम पनीर बोलते हैं, वो नॉर्मल तो नहीं रहा, नॉर्मल दूध तो नहीं रहा, ठीक है, हम उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये टेंडेंसी अगर मान लिया जाए लिवर से बाइल निकल रहा है और बाइल जमा हो रहा कहां? गॉल ब्लैडर में जमा हो रहा है, और उसमें आकर हुआ क्या कि वो तो फूट गया, वो तो पनीर बन गया है, तो उसका पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा, वो जो थक्का जम गया है वो नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठा बैठा वो सख्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तो ब्लैडर की एक कंसिस्टेंसी है कि हमेशा मूव करता रहता है, हमेशा जैसे कोई चीज सुकड़ती है फैलती है, सुकड़ती है फैलती है, हर एक सेल ही ऐसे कर रहा है, तो गॉल ब्लैडर भी ऐसे कर रहा है। तो वो जो सिंगनी चीज है उससे पूरी तरह स्क्वीज होकर निचोड़ कर पानी तो उसका ऊपर आ रहा है, सिंगना मादा जम रहा है, तो क्या बनेगा? गॉल ब्लैडर के स्टोन बन जाएगा। और गॉल ब्लैडर का स्टोन ही क्यों बनेगा? किडनी में भी तो वो जा रहा है, वही खून जा रहा है, इसी तरह किडनी के अंदर भी क्या होगा कि स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। अकेला किडनी में ही नहीं, बॉडी के और बहुत सी जगह है, जैसे ग्लैंड्स जितने भी हैं, थायराइड ग्लैंड गले में, मुंह में बहुत सारे सबलिंगुअल ग्लैंड हैं या वेस्टिबुलर ग्लैंड, कितनी तरह के ग्लैंड मुंह में, जितनी जगह जगह अलग अलग ग्लैंड्स हैं, उनमें भी यही कंडीशन बन जाएगी कि भाई वो दूध तो फूट गया, और उसी में भी पथरी बनने की टेंडेंसी बन जाएगी। अब यही बात, यही खून चमड़ी में भी तो जा रहा है,
चमड़ी में भी जा रहा है तो वो कड़ी आज जितने बोलते ना स्किन टैग हो गए, मौके हो गए जी, बड़े बड़े मौके होने शुरू हो गए, यहाँ कहीं ना कहीं ट्यूमर गिल्टियां बननी शुरू हो गई हैं शरीर में, मेरे यहाँ पर भी गिल्टी, मेरे पेट में भी गिल्टी, या बाव में भी गिल्टी, ये जितनी भी गिल्टियां होनी शुरू हो जाती है ना, उसका मतलब ये है कि आपका दूध फूट गया है, सेल मेम्ब्रेन खराब हो गया, अंदर का जो साइटोप्लाज्म था उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहा, और इसकी वजह से यही अब जगह जगह सेल में एक दूसरे से सेल में जा रहा है, सेल टू सेल बॉडी में जा रहा है, और बॉडी में जाते अलग अलग जगहों में जम रहा है, वहां पर ये स्टोन फॉर्म करेगा। सो ये बातें आम तौर पर मान लिया जाए पत्रिका आता है कोई भी केस किसी के डॉक्टर के पास, तो असल वो ये होता क्या, अच्छा भाई गाल ब्लैडर निकलवा दो, अरे भाई गाल ब्लैडर निकलवाना हालत तो नहीं है ना, असल हालत तो ये है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये बात चली कहां से है। गाल ब्लैडर निकाल दोगे तो आंखें बंद कर लोगे तो बिल्ली कहे कि कबूतर नहीं आ रहा, वो तो आ रहा है, वो दूसरे किसी अंगों में जाएगा और कहीं जगह जाकर ये संगना जमना शुरू हो जाएगा। तो पर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मानते ही नहीं है, नहीं नहीं ये जो तुम्हारी बवासीर है ना, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, गाल ब्लैडर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन भाई अंग तो वही है, वही सेल है, वही सेलों का अंदर का निजाम मेम्ब्रेन खत्म होने की वजह से, खराब होने की वजह से अंदर का निजाम तो हर एक जगह का बदला है, ऐसे तो नहीं है कि एक जगह का बदल गया दूसरी जगह का नहीं बदला है, हर एक जगह का होता है। हाँ ये होता है कि एक जगह में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया दूसरी जगह में, मैंने एक एग्जाम्पल दी थी यहाँ का, अगर कहीं रिश्तेदारी में कोई डेथ हो जाती है ना, जितनी जितनी हमारी नजदीकी होती है उसमें उतना उतना हमें दुख होता है, उतनी उतनी पीड़ होती है, जितना जितना दूर का अंग होता है उतना उतना थोड़ा दुख कम होता है, दुख तो होता है उतना कम होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लिया जाए कोई प्रॉब्लम आ गई किस तरह की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी में इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलेशन में इफेक्ट होगा, लेकिन वो दूर के रिश्तेदार हैं उनमें थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा इफेक्ट हमें उस अंग में ही दिखाई देता है। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हो तेरे तो गाल ब्लैडर में नुकसान है, गाल ब्लैडर निकाल दो, जहां पर दुख है उसी को निकालने की कोशिश की जाती है, ये जो सही ट्रेंड नहीं है। क्योंकि हम लोग ने एक डेफिनेशन दी थी कि असल में जो कुदरत ने शरीर बनाया है उससे सियाने उससे समझा तो हम नहीं है ना, हर एक चीज जो उसने लगाई है ना वो किसी ना किसी जरूरत के हिसाब से लगाई है, और हम कहें कि नहीं भाई ये चीज तो इसकी तो जरूरत नहीं। अब देखा कि वो ट्रेंड चलता है कि किसी को अपेंडिक्स जो होता है ना, कई बार बच्चे पैदा होते ही उसका अपेंडिक्स निकाल देते हैं कि ना भाई आगे चलकर इसको कहीं अपेंडिसाइटिस ना हो जाए, इसी प्रॉब्लम ना हो जाए, कई बार लोग पहले मर जाते थे अपेंडिक्स की वजह से, अंदर जाता था तो बोलते इसको निकाल ही दो। लेकिन अभी हमें पता चला, क्योंकि डे टू डे जो रिसर्च होती है पता चलता है कि जितने भी अंग कुदरत ने शरीर में लगाए हैं ना उनका कोई ना कोई फंक्शन है, उसको निकाल देने का मतलब ये हम इग्नोरेंट हैं, हम नहीं जानते उसके फंक्शन के बारे में, और हम जानते हैं और फिर भी निकालते हैं तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि इसका कोई पर्पज है जो उसने लगाया है वो काम कौन करेगा, अगर नहीं करेगा तो वो आगे ट्रांसमिट होगा। एक आदमी क्लर्क यहां काम करता था, उसका कोई काम था, अब आपने उसको हटा दिया, अब वो फाइलें कौन देखेगा, और किसी और डिपार्टमेंट जाएंगे उसको खराबी करेंगे, उसका तो अपना काम है। तो इसी तरह गाल ब्लैडर को निकाल देना हल नहीं है, या किडनी वाली बात कहां भी हो गई उसको वहां से हटा देना अंग को, ये उसका हल नहीं है। हल ये है सोचना है कि अगर मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से अगर साइटोप्लाज्म में उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो उसको ठीक करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या ये इंटरनल इंडोटॉक्सिन से हुआ है या एक्सटर्नल एक्सोटॉक्सिन से हुआ है, तो उसके मुताबिक डॉक्टरों को परहेज बताना होगा, उसके मुताबिक डॉक्टरों को इलाज करना होगा ताकि वो चीज परमानेंट हो जाए, परमानेंट ठीक हो जाए, किसी अंग को काटकर बाहर फेंकना ना पड़े। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में सब चीजें ऐसा कर रहे हैं और सभी अंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अब तो कोई पर्पज नहीं है, अब इसको निकाल दी। अब जब हम इसको ऐसे करते हैं, जानते हैं भी ये हो गया है, इसकी वजह से और क्या निशानी आएंगी, पीडीए की बात मैंने बता दी, सांस ब्रेथलेसनेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो जाएगी,
और दिल ज्यादा धड़कना शुरू करेगा। क्यों ब्रेथलेस में ऐसा होना शुरू हो जाता है? मतलब अब ऑक्सीजन पूरी जा नहीं रही। अब दिल का क्या काम है? दिल का काम है सेलों को, खुराक को अलग अलग जगह पहुंचाना। अब सेलों के लिए वो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उसके पास रेड ब्लड सेल हैं, वो तो डब्बे हैं, खाली खाली डब्बे हैं ट्रेन के, उसमें माल भर के जाता है, ऑक्सीजन भर के जाती है। अब और सेल ही टूट गए हैं, सेल ही कम है, ट्रेन के डब्बे ही कम है जिसमें ऑक्सीजन जा सकती है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अब दिल का क्या काम है कि ना भाई तेरा काम है सप्लाई करना। अब मिस्त्री दीवार के काम कर रहा है और जो वो सीमेंट पहुंचाने वाला बंदा या ईंट पहुंचाने वाला बंदा, वो सीमेंट ईंट ही नहीं पहुंचाएगा तो मिस्त्री बेचारा क्या करेगा? नहीं तो उसको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चक्कर लगाने पड़ेगा कि फटाफट चलो भाई मिस्त्री खाली नहीं रहना चाहिए। तो वही काम ऑक्सीजन पूरा करने के लिए दिल को बार बार धड़कना पड़ता है, बार बार 72 से 80 बार हम लोग नॉर्मल समझते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही किसी भी हालात में, अब ये हालात तो मैंने आपको मेम्ब्रेन का बता दिया ना, अगर किसी भी हालात में ये अगर पूरा नहीं हो रहा तो उस हालात में दिल को बार बार झड़कना पड़ेगा, बार बार इसको सर्कल में लाना पड़ेगा। और इसी हिसाब से जो फेफड़ों का काम है कि नहीं बाहर से ऑक्सीजन और ज्यादा ले लो, बाहर से ओके, बाहर की ऑक्सीजन में नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और उसमें से ऑक्सीजन हम उसको फिल्टर करके सेलों में देनी है, लेकिन अब पूरी नहीं हो रही तो फिर हम सांस भी तेज तेज बार बार लेंगे और ये कंडीशन जो है सामने हमें दिखाई देगी, जो ये साबित करेगी पेशेंट आया सामने देखे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं इसका मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है। और अगर ऐसा होना शुरू हो जाता है तो उसमें मसल की वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, हरेक सिस्टम ही वीक हो जाए, भूख नहीं लगती, इंडाइजेशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि हजम नहीं हो रहा। और एक और बात, अगर जिन लोगों को ये चीज लगातार लंबे समय तक रहती है, अब बुजुर्गों को देखते हो ना कि एड़ी फट गई है, उसकी बिराइयां फटनी शुरू होगी जिसको बोलते हैं, उंगलियों की जो टिप्स हैं पोते हैं वो क्रैक होने शुरू हो गए। ये क्यों होता है? ऐसे होता है कि उनके सेलों में जो चीज जा रही है वो पूरी तरह वहां एडजस्ट नहीं हो रही और वो खुराक सर्कुलेशन में भी पूरी नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से जैसे नहर की टेल होती है ना, जहां पर बहुत ब्रीक हो जाती, छोटी हो जाती नहर, वहां पर पानी नहीं जाता। अगर पीछे से प्रेशर कम हो या बाघड़ा से पानी कम छोड़ा जाए तो वो नहीं जाएगी। इसी तरह ही बुजुर्गों में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनकी एड़ियां फटनी शुरू हो जाती है, रियाइयां फटनी शुरू हो जाती है, उंगली के टिप्स जो फटने शुरू हो जाते हैं। पर ये बात हम बुजुर्ग की कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन किसी यंग एज में होनी शुरू हो जाए तो फिर हमें इमीडिएट इंडिकेट करती है कि नहीं इसके शरीर में कोई ना कोई इस तरह का जहरीला मादा जरूर चले गया है और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे याद है एक एग्जाम्पल मेरे फादर साहब दिया करते थे हकीम अजमल खां के बारे में। वो बोलते हैं कि हकीम अजमल खां को उस वक्त तो वैद होते थे, इस तरह की क्लिनिक बनाकर हमारी तरह तो नहीं बैठते कि दो तीन कमरे हम रिजर्व करके बैठे हैं कि मेडिसिन अलग है, कंसल्टेशन अलग है, फाइलें अलग है, इस तरह का तो काम नहीं होता था उस वक्त। तो उस वक्त वो दरख्तों के नीचे बैठे हैं, वैद जी बंदे लगे हुए हैं, कूट पाट के वो सबको दे रहे हैं। तो इस तरह की बात थी, कुछ अंग्रेजों ने सोचा कि हमने सुना है अजमल खान हकीम का बहुत नाम सुना है, देखते हैं चेक करते हैं उसको। और वो उसके पास चेक करने के चले गए, उसने बोला कि भैया हम लोग आए हैं और देखिए तो नब्ज देखकर हमारी बताइए क्या बीमारी है। और उसने देखा और उसने बोला अच्छा इनको भाई फलानी फलानी दवाई दे दो। बोला यार नाम तो बहुत सुना था, इसलिए तो एक मिनट में हमें कहा दिया वो दवाई दे दो, इसका क्या हुआ, कैसे इसको कैसे पता चल गया बीमारी क्या है कैसे है? वो गए और थोड़ी दूर जाकर बोलते हैं यार ये ऐसे ही नाम सुना था, नाम ही चलता है इसका और कोई काम तो है नहीं इसका। और उसके किसी शागिर्द ने, अजमल खां के शागिर्द ने सुन लिया तो उसने वैद्य जी को बताया, अजमल खां ने कहा उनको बुलाकर लाओ। बुलाया, वो बोलता है तुम्हारे शरीर में आज से 10 साल पहले का कोई जहर है और उस जहर की वजह से तुम्हारा ये मेम्ब्रेन खराब हो गया है, जिसकी वजह से मैंने ये दवाई आपको दी है। बोला भाई कुछ हुआ था? तो उसने बताया मुझे सांप लड़ा था, सांप ने काटा था। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर जब भी कोई ऐसा कुछ होता है तो ये निशानियां आम तौर पर आनी शुरू हो जाती, डिजीनेस होगी, बंदा इरिटेट हो जाता है, जब सांस फूलता है ना
कि नहीं काम चला जाता है तो काम करना पड़े, तो आदमी इरिटेट हो जाता है। ये साधारण सी बात है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल्पिटेशन हो गया, डिजीनेस होगी, इरिटेशन होगी, मांसपेशियां सूखनी शुरू होगी, ब्याइयां फटनी शुरू होगी। अगर लंबे समय तक है और जवान बंदा बूढ़ा है तो हम समझते हैं कि कंडीशन है, एज ओल्ड एज की सर्कुलेशन स्लो हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अगर यंग एज में ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे की कहानी सेल मेम्ब्रेन की है। अब भाई बूढ़ा हो गया।